0: राम राम मंडळी, मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहेर, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू. बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आपल्या बरोबर आज परत आहेत स्वातंत्र्य दिन साजरा करायला कर्नल राकेश कुमार सर. जय हिंद.
1: जय हिंद. थैंक यू एक बार फिर से बुलाने के लिए मुझे.
0: अरे वहा, मैं तो चाहूं कि आपके साथ सालों साल बातें करूं. अच्छा, तो 21 साल अपने सर्विस की
1: जी,
0: फील्ड में भी रहे
1: जी,
0: सिविल एरियाज में भी रहे
1: जी,
0: और फिर आपने रिटायरमेंट ले ली
1: जी.
0: उसका कारण?
1: रिटायरमेंट लेने का एक बहुत मेजर कारण जो है वो ये है कि जब आप हर एक इन्फेंट्री ऑफिसर से अगर आप कभी बात करें तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट जो आता है वो, या सपना जो होता है वो है अपनी बटालियन को कमांड करना. तो सन 2014 में मेरा भी ये सपना पूरा हुआ और मैंने अपनी पैरेंट बटालियन तो नहीं कमांड करी, पर मुझे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक बहुत ही फाइन बटालियन 24 ग्रेनेडियर्स को कमांड करने का मौका मिला. एंड जब वो मेरी कमांड खत्म हुई, उसके बाद जब मुझे स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स मिली, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक्टिव फील्ड की ड्यूटी जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं फौज में, वो कम होती जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आपकी बढ़ती जाती है.
0: अच्छा.
1: और मुझे लगता है मुझे हमेशा से ही एक्शन पसंद रहा है, फील्ड पे रहना पसंद रहा है. और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरी पोस्टिंग के दौरान मैं इतनी प्यारी प्यारी जगहों पर रहा हूँ. भारत सरकार ने जो हमको पोस्टिंग्स दी, वो जब हम नेचर के इतने करीब जाते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं. अरुणाचल में, असम में, इवन जम्मू एंड कश्मीर में, वो हम उनको वर्जिन टेरिटरी बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई सिविलियन जनरली पहुँच नहीं पाता, और वो बहुत ही बेहतरीन जगह हैं. तो जब मैं ऐसी जगहों पर आया, मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती थी जब मैं वापस सिटी की तरफ मिलता था, वापस सिटी की तरफ जब भी मैं आता था, क्योंकि कैंटोनमेंट तो ठीक है, बहुत अच्छे से हर जगह पे कैंटोनमेंट बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से मेंटेन रहता है, लेकिन जब आप सिटी में बाहर जाते हैं तो आपको जो ट्रैफिक पॉल्यूशन और बिल्डिंग्स और वो जो मिलता है,
0: अलग ही जिंदगी,
1: वो एक अलग जिंदगी है और वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जिंदगी है. और मुझे लगता है कि मैं उससे कभी भी कहीं भी कंफर्टेबल नहीं था. और मेरे को ये लगता था कि आज नहीं तो कल जब भी ये नौकरी खत्म होगी, तो फिर अल्टीमेटली जब मैं बाकी अपने सीनियर्स को देखता था कि वो वापस गुड़गांव में, जयपुर में, या दिल्ली में, या जो भी चंडीगढ़ में, जैसे भी हो, जब वापस लोग सेटल हो रहे हैं तो वो उसी सिविल लाइफ में वापस जा रहे हैं, एक उन्होंने फ्लैट खरीद लिया और फिर उसी सिटी में. मुझे वो कभी जमा नहीं है एक्चुअली. और मुझे हमेशा लगता था कि मुझे जो ये फौज का जो ये लाइफस्टाइल है, खुले जंगलों में, खुले एनवायरनमेंट में घूमना और नेचर के साथ रहना, मुझे हमेशा से पसंद रहा. तो मैंने इस तरीके से प्लान किया कि फौज खत्म होने के बाद, या अगर पॉसिबल हो तो फौज के साथ साथ ही मुझे एक पैरेलल, मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, जिसको, जिससे मैं अपनी लाइफस्टाइल वो नेचुरल लाइफस्टाइल में मेंटेन कर सकूं. मेरा बहुत झुकाव था इसके तरफ, नेचर, सस्टेनेबल फार्मिंग, या इस तरह की जो भी बात है, एनवायरमेंटल कंसर्न, जो भी था उस समय मेरा काफी झुकाव था. और इसके ख्याल से मैंने सोचा कि मैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेता हूं और अपनी फार्म लाइफ शुरू करता हूं.
0: नासिक ऑप्ट क्यों किया?
1: नासिक बड़ा नेचुरल चॉइस था. मैं पुणे में, मैंने अपनी फौज के द्वारा ही मिलिट्री, नहीं, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग की, तो मैं पुणे में 3 साल तक पोस्टेड था. तो उस समय मेरा दोस्तों के साथ एक दो लोगों की, मेरे कोर्समेट्स वगैरह की और जूनियर्स की यहाँ पे शादी हुई, तो मैं नासिक आया और नासिक मुझे बड़ा पसंद आया. और फिर ये हुआ कि एज लक वुड हैव इट की मेरी खुद की शादी भी नासिक में ही हुई.
0: हाँ.
1: जी, तो मेरी वाइफ नासिक से हैं, तो ये फिर बड़ा नेचुरल वो बन गया.
0: अच्छा.
1: कि ठीक है, फिर हम अपनी जो भी प्लानिंग करते हैं. इसके पहले मैंने एक बार उत्तराखंड में भी ऐसा सोचा था, पहाड़ मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी हम कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं या कुछ अपनी सेटअप वहाँ बना सकते हैं नेचुरल प्लेस में. लेकिन जब मैं नासिक आया तो मुझे लगा नासिक इज वे वे बेटर, और यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है. उत्तराखंड में एक बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे पोस्टेड था और हादसा हुआ जहाँ पे बादल फटे और बहुत सारा तो भूस्खलन वगैरह और ये सब, तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत सही चॉइस नहीं रहेगी. नासिक उस हिसाब से बहुत स्टेबलाइज्ड है, सेफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आबो हवा बहुत ही बेहतरीन है, और अगर मैं वैसे देखूं तो बहुत बड़े बड़े सिटी के भी बहुत पास है, मुंबई पुणे के भी बहुत पास है, तो यहाँ पे दोनों मिक्स है, आप नेचुरल लाइफ या वो भी रह सकते हैं, और अगर आपको सिटी लाइफ चाहिए, सिटी की फैसिलिटी चाहिए, तो वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है।
0: तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हो आप? मैं सालों से नासिक में, अभी
1: मैं अभी वैसे तो हम ऑफ एंड ऑन नासिक में ही है, लेकिन अभी मैं रिटायरमेंट के बाद तो पिछले 4.5 साल से नासिक में ही हूँ।
0: क्या कर रहे हो?
1: और अभी मेरा एक वेंचर है जिसको हम फॉग फार्म्स ऑर्गेनिक का हमने नाम दिया है। ये मेरा 6 एकड़ का एक प्लॉट है जिसको मैं एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेस्टिनेशन के रूप में मैं डेवलप कर रहा हूँ, और इसको हमने एग्रो टूरिज्म से भी जोड़ा है। ये हमने एक इस तरह का एक जगह की डेवलपमेंट हमने की है जहाँ पे आप सही में बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से नेचर का मजा ले सकते हैं।
0: कहाँ ये?
1: ये हमारा फार्म जो है वो घोटी सिन्नर हाईवे पे SMBT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उससे तकरीबन 3 किलोमीटर पे है। और जो लोग इसको बॉम्बे की तरफ से सुन रहे हैं तो समृद्धि हाईवे का जो एग्जिट है, नासिक का एग्जिट आप उसको बोलें या घोटी का एग्जिट बोलें, उससे तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत ही ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत इजीली एक्सेसिबल है रोड से भी, और उसके बाद भी जो लेआउट है ग्राउंड का, वो इगतपुरी तालुके में आता है, जो ग्राउंड का लेआउट है बहुत ही नेचुरल है। और हमने एग्जैक्टली ये वाटर फ्रंट पे तो नहीं है ये प्रॉपर्टी, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है डैम से, लेकिन हमने अपने खेत के अंदर ही कुछ वाटर बॉडीज का, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज का निर्माण किया है जो कि काफी खूबसूरत है।
0: तो अभी क्या कर रहे हो वहाँ? आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे चल रहा है?
1: जी,
0: यू आर स्पेंडिंग योर ऑल ऑफ द टाइम इन योर फार्म?
1: जी, पहले तो मेरे एक दो और भी वेंचर थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि इस वेंचर में मेरी दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, और मुझे ये काम भी पसंद है। मैं हमेशा से दो चीजों के साथ बहुत ही करीबी तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, एक तो फील्ड ऑफ एडुकेशन और दूसरा नेचर, और नेचर में भी सस्टेनेबल फार्मिंग या नेचुरल एनवायरनमेंट, ये मेरा हमेशा पेट प्रोजेक्ट रहा है। तो मैं अपने फार्म को एक नेचुरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पे ना आपको सिर्फ इसकी सुविधा हो कि आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाएं, आप वहाँ पे आकर के आप चाहे तो गार्डनिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो खेती कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक गार्डन भी है, वेजिटेबल्स गार्डन भी हमने बनाया है, हमारे तकरीबन 20 से 30 प्रकार के फल के पेड़ हैं वहाँ पे, फूल तो पता नहीं बहुत सारे हैं, और हमारे पास कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग की भी सुविधा है, वहाँ से आप ट्रेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उस जगह को एक एडुकेशनल हब के तौर पे, जहाँ पे आप बेसिकली नेचर के साथ आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत जोर है और आउटडोर ट्रेनिंग का बहुत लोग इसकी महत्ता को समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप आउटडोर्स में जाकर के आप किसी भी चीज़ पे या तो आप डिस्कशन लें या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी क्वालिटीज डेवलप हों, या मेरा मानना है कि जो भी जिंदगी जीने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, जिसको हम आमतौर पर सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आउटडोर्स और नेचर के साथ ही डेवलप होती हैं। तो अभी हम अपने फार्म्स पे वैसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप आकर के अपनी नेचुरल एंड सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है।
0: क्या बात है। और आपकी ट्रेनिंग उसमें?
1: जी, और मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग को उसमें यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो हमने जिंदगी के पिछले 24 सालों में देखा समझा, और मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का भी जो तकरीबन 4.5 साल है, उसमें भी जो मैंने जितना भी अनुभव हमने लिया है, उन सबको जोड़ करके हम अपना करिकुलम बना रहे हैं, और हमने फार्म पे उस तरह का एनवायरनमेंट बनाया है कि आप आकर के, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि आप अपने लाइफ को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं वहाँ पे।
0: लेकिन एक सोल्जर रिटायरमेंट के बाद 20-22 साल सर्विस करने के बाद वापस सिविलियन सोसाइटी से कैसे एडजस्ट करता है? एक कंपाउंड वॉल के बाहर निकलते हो आप डायरेक्टली,
1: जी
0: एकदम अलग जिंदगी।
1: जी जी, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एज ए सोल्जर एंड स्पेशली एज एन ऑफिसर आप बहुत प्रिविलेज लॉट हैं इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में आपके मेन जो है, आपको अगर मैं बोलूं कि सर आंखों पे बिठा के रखते हैं तो वो गलत नहीं है, और सरकार आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी देती हैं। तो उस परिवेश से निकल करके जब आप एक सिविलियन लाइफ में आते हैं और आप कॉरपोरेट जॉब नहीं कर रहे, आपने अपना कुछ वेंचर खोलने का सपना लिया है या आप उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो ये काफी टफ सिचुएशन है और मुझे लगता है इसमें आपको काफी अनलर्निंग और रीलर्निंग करने की जरूरत पड़ती है।
0: जरूरत ज्यादा है।
1: जी जी पूरी तरह से सहमत हूं मैं, क्योंकि जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो ये बिल्कुल एकदम जैसे अगर हम आज अगर हम हारमोनियम बजाना शुरू करें या हम चाहे जिस भी लेवल पे हो हमको शुरुआत सारेगामा से ही करनी पड़ेगी और वही रियाज वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो शायद आज संगीत को सीखने वाला 6-7 साल का बच्चा भी कर रहा है। आपकी भले ही

0: अपने आप को टोटली रीलाइन करने की जरूरत है।
1: लर्न और अनलर्न, कितना सुंदर शब्द है
0: जी। अनलर्न एंड रीलर्न, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। आपको अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे लाना पड़ेगा। आपको उसी ह्यूमिलिटी के साथ शुरू करना पड़ेगा जैसे शायद मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग शुरू करी है। जे बिल्कुल नया कैडेट, किसी को कुछ मालूम नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है, एंड जो भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उसी फेज में जाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी नया वेंचर खोलना है। और बहुत टफ सिचुएशंस आती है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। फिनेंशियली भी टफ आता है, इमोशनली भी टफ आता है, आपका सपोर्ट सिस्टम भी आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ता है। तो ये टफ जर्नी है, चैलेंजिंग है
1: करना।
0: जी जी, बट एट द सेम टाइम बहुत रिवार्डिंग भी है, बहुत रिवार्डिंग।
1: एक सम्मान मिल जो मिलता
0: जी,
1: है।
0: जी, जी,
1: जी। अच्छा, जिन बच्चों को सर्विसेज ज्वाइन करनी है
0: जी,
1: उन्हें आप क्या कहोगे और साथ ही उनके पेरेंट्स को क्या कहोगे?
0: ओके, मैं पेरेंट्स को तो सिंपली ये बोलूंगा कि आज के दिन भी इंडियन आर्मी वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर च्वाइसेस है। अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुआयामी तरीके से, और अगर आपकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि आप अमेरिका यूरोप जा करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिला सकें, लेकिन आपकी इच्छा है कि उन हमारे बच्चों की लाइफ क्वालिटी उसी तरह की हो, तो मुझे लगता है इंडियन आर्मी एक नेचुरल चॉइस है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो फैसिलिटीज आपको इंडियन आर्मी आज आपको देती है, वो अभी भी मुझे लगता है कि बाहर में इन सिविलियन लाइफ में 0.001% लोग
1: क्या ही, बात करो।
0: यस, आपको उस तरह की लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपको एक नए लड़के को अभी भी करोड़ों में पैकेज लेना पड़ेगा। और वो भी शायद, अगर वो लेने के बाद शायद ये हो कि उनके पास टाइम ही ना हो उस पैसे को खर्च करने का, ये एक दूसरी दुविधा है। और बहुत सारी चीजें आपको इंडियन आर्मी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और अगर आपकी ऐसी चॉइस है, आप एडवेंचर के शौकीन हैं, और मेरे ख्याल से यंग ब्लड्स तो उनको इससे बढ़िया लाइफ तो मुझे लगता नहीं कि उनको मिल सकती है। आप नई नई जगहों को देखने के शौकीन हैं, आप नए नए लोगों को मिलने के शौकीन हैं, आप नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी से बढ़िया कोई जगह नहीं। अगर आप अभी बहुत छोटे हैं, 10th और 12th लेवल पे हैं, तो आप NDA के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप इंजीनियरिंग में हैं, तो उसमें भी अलग अलग एंट्रीज हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद CDS में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस करियर के किस मोड पे खड़े हैं और आपको किधर जाना है, उसके हिसाब से बहुत सारी। एंड इंडियन आर्मी में आज के डेट में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक जिनको हम परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। सो परमानेंट कमीशन मतलब 20 years एंड मोर, आप 32 साल की भी नौकरी कर सकते हैं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10+4 की सुविधा होती है, 10 साल की आपको जॉब करनी है एंड उसके बाद आपको 4 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है, और फिर 14 साल के बाद आपको निकलना पड़ेगा। तो आज के हिसाब से शॉर्ट सर्विस कमीशन भी बहुत अच्छा एक विकल्प है यंगस्टर्स के लिए, और मुझे तो लगता है ये बहुत आइडियल विकल्प है। क्योंकि आप अगर देखें तो आपकी जो भी एडवेंचर सीख करने की भी जो उम्र होती है, वो भी 20 से लेकर 35 साल तक होती है। तो इस उम्र में आप एक अमेजिंग लाइफस्टाइल जी सकते हैं इंडियन आर्मी में, और इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद, इतनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद, जो आपकी मैच्योरिटी लेवल होती है या जो आपका मेंटल रेजिलियंस होता है, उससे आप बाहर जा कर के कोई भी काम कर सकते हैं बहुत ही उम्दा तरीके से। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको रीअलाइन करने के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कॉरपोरेट जॉब हो, उसमें आपको रीअलाइन करने के लिए आपको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक्सीलेंट रिजल्ट्स अचीव करने के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं।
1: ओके, आर्मी नेवी एयरफोर्स
0: जी,
1: उसमें क्या चूज करें, कैसा चूज करें
0: जी?
1: तो वो अपने हाथ में है या एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद वो डिसाइड होता है
0: जी? अमूनन ऐसा होता है कि आपको तो जनरली अपना रुझान मालूम है, बच्चों को पता होता है कि उनको एयरफोर्स में जाना है या उनको पानी या जहाज में ज़्यादा दिलचस्पी है या उनको ग्राउंड एक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो आप अपने रुझान के हिसाब से आप अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग पे,

0: और क्या चॉइस आपने एग्जाम के दौरान आपने उस समय भरा है। तो जनरली ये होती है कि एनडीए वगैरह में तो आप एक नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा जाते हैं
1: और ट्वेल्थ
0: पास करके एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसके बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। एनडीए के 3 सालों में पहला 2 साल तो सबकी कॉमन ट्रेनिंग होती है और हालांकि आपको अलॉटमेंट पता होता है कि आप किस में हैं, इंडियन आर्मी कैडेट हैं, एयरफोर्स कैडेट हैं और नेवल कैडेट हैं, और उसके बाद आपकी फिर अलग अलग ब्रांच में ट्रेनिंग शुरू होती है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हम कैसे सिलेक्ट करें, तो उसका तो मेरे पास यही जवाब है कि आप अपने इन्वायरमेंट से आपको क्या प्रेरणा मिली है, आपका रुझान किस तरफ है, वो एक मेजर डिसीजन फैक्टर है। और बाकी कभी कभी ये होता है कि जैसे आपका हमेशा से रुझान एयरफोर्स था और आपको फाइटर पायलट बनना है, पर अगर आपकी रैंकिंग नहीं आई उतनी तो हो सकता है आपको ग्राउंड स्टाफ मिले, या हो सकता है आपको एयरफोर्स मिले ही ना, क्योंकि अगर एनडीए के टॉप रैंकर्स ने सबने अगर एयरफोर्स ही चुना है तो हो सकता है आपका नंबर वहां पे ना लगे। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है तो उसके लिए आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखें, आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए, और बाकी तो जो भगवान देता है वो मेरे ख्याल से वो जो भी देता है वो अच्छा ही देता है, आपको वो मान के चलना चाहिए कि जो भी होता है वो आपके भले के लिए ही होता है।
1: अच्छा, नासिक में आर्टिलरी सेंटर है
0: जी,
1: फिर आर्मी का भी है ना, और एयरफोर्स तो उधर में है
0: जी। जी, आर्टिलरी इज पार्ट ऑफ आर्मी ओनली। हाँ। जी, तो आप उस तरीके से आर्मी का तो बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है आर्टिलरी सेंटर एंड स्कूल ऑफ आर्टी के फॉर्म में, एंड एयरफोर्स का भी है, ओजर में भी है और देवलाली के पास भी है।
1: देवलाली में एयरफोर्स भी है
0: जी। जी, उनकी एक मेरे ख्याल से उसको मेंटेनेंस ग्रुप बोलते हैं, बट उनका एक यूनिट है देवलाली में भी है।
1: हेलीकॉप्टर का ट्रेनिंग वगैरह होता है ना, काफी
0: वो ओजर में हेलीकॉप्टर। जी जी, वो हेलीकॉप्टर वो एयरफोर्स का पार्ट नहीं है, वो आर्मी एविएशन का पार्ट।
1: अच्छा, आर्मी का है।
0: जी जी, वो आर्मी एविएशन का पार्ट है, कैट्स के नाम से जाना जाता है वो।
1: अच्छा।
0: और वो तो नासिक रोड पे ही सिचुएटेड है, तो आप आते जाते भी वहां से हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देख सकते हैं।
1: देखते काफी।
0: जी जी, तो वो आर्मी एविएशन का पार्ट है, एयरफोर्स का नहीं।
1: आर्टिलरी सेंटर नासिक का जो है
0: जी,
1: तो वो आप लोगों के लिए कितना महत्व का है, वहाँ क्या क्या होता है?
0: वहाँ पे बेसिकली पी स्टेशन में, जैसे मैंने पहले बताया कि पी स्टेशन में जितने भी कैंटोनमेंट हैं, तो उनका मेन एम जो है वो ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ आर्टी और आर्टिलरी सेंटर, ये बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं।
1: आर्टिलरी मतलब बड़ी गन्स क्या?
0: जी जी, बड़ी गन्स। तो बिल्कुल, जैसे एक बहुत पॉपुलर नाम जहन में आता है बोफोर्स गन, क्योंकि एक समय था जब बच्चा बच्चा इसके नाम से परिचित था, तो वो एक आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी गन्स का रोल ये होता है कि वो हम इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट फायर। इनडायरेक्ट फायर का मतलब है जैसे हमारी इन्फेंट्री की गन्स तो डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल होती हैं, जब आपको दुश्मन सामने दिखता है तभी आप फायर कर सकते हैं। आर्टिलरी गन्स के साथ ये एडवांटेज है कि अगर आपको सामने दुश्मन नहीं भी दिख रहा है आई साइट में, तो भी आप फायर कर सकते हैं, हवाई फायर करके, इंगेज करके। उसकी टेक्निक है, आप उसके ऊपर, दुश्मन के ऊपर गोला गिरा सकते हैं, और उनकी फायर पावर और जो उनकी विध्वंसक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और आप आजकल तो हमारे पास इस तरह की आर्टी गन्स हैं जो बहुत दूर दूर तक फायर कर सकती हैं। नॉर्मल आर्टिलरी गन्स की जो रेंज है वो 20 से 40 किलोमीटर तक हम बड़े आराम से बहुत इफेक्टिव फायर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे को बेसिकली इन्फेंट्री, अगर मैं इन्फेंट्री सोल्जर बोलूँ तो हमको बहुत नाज है अपने आर्टिलरी पे, और हमको बहुत सपोर्ट देती है जब हम रियल असॉल्ट के लिए जाते हैं, हमारी जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: क्या बात है कर्नल साहब, वापस कहता हूँ और बात करने की इच्छा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ एक नेक्स्ट संडे वापस हम लोग बात करें
0: जी।
1: सब्जेक्ट ये हो
0: जी
1: कि आप लोग इतना अपने जान देने को तैयार हो
0: जी
1: देश के लिए
0: जी,
1: और हम सिविलियंस इधर क्या कर रहे हैं
0: जी,
1: मातृभूमि मातृभूमि करते, उसके लिए हमारी प्रति सिर्फ 2 दिन के लिए एक भावना जागृत हो जाती है, उसके बाद वापस खत्म। करप्शन का लेवल क्या, ये क्या, वो क्या, अपने देश का नुकसान करना, ऐसा करना, उसके बारे में बात करेंगे। ये देख के आप लोगों को कैसा लगता है
0: जी,
1: और उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस करिए
0: जी।
1: ठीक है
0: जी,
1: तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। राम राम मंडली फेड़िया।

0: संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने 1940 से पहले ही फिल्मों में प्रवेश किया। जयपुर में जन्मे पंडित गोवर्धन प्रसाद के बेटे खेमचंद प्रकाश को संगीत विरासत में ही मिला, क्योंकि पिता राज दरबार में गायक थे। संगीत के अलावा नृत्य में भी उनकी रुचि थी, लिहाजा कथक नृत्य की भी शिक्षा ली और केवल 19 वर्ष की छोटी उम्र में बीकानेर के महाराजा के दरबार में गायक की हैसियत से नियुक्त हुए। बाद में नेपाल दरबार में रहे। संगीत उनकी रग रग में बसा था।
1: फिर जाऊं अभी फिर जाऊं, तुम ठहरो अभी ले आऊं।
2: क्या भूख से मैं मर जाऊं, क्या कच्चा तुझे जमाऊं, ना माफ़ून कहे की धुन हुए जिन्नूल।
1: अब दर्द

0: बस तोबा बीबी तोबा,
1: पहले भी तो की थी तोबा।
0: अरे बस तोबा बीबी तोबा,
1: पहले भी तो की थी तोबा।

सचिन प्रकाश राजस्थान से वाबस्ता थे सुजानगढ़ से, और शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में काफी महारत हासिल की थी उन्होंने, और मशहूर ध्रुपद गायक भी थे और अच्छे, बहुत अच्छे कथक नृत्यकार भी थे। यही वजह से उनके गानों में जो हम ताल की अहमियत खास दिखाई देती है, और कलकत्ते में उन्होंने न्यू थिएटर्स में तिमिर बरन के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम किया। श्यामचंद प्रकाश उन महान संगीतकारों में से थे जिनकी याद वक्त की रवानी में बह गई है। 1949 में बम्बई आए, उनकी पहली फिल्म थी मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन, जिसमें उन्होंने आज के मशहूर संगीतकार नौशाद को अपना असिस्टेंट बनाया था। नौशाद आज भी एहतराम से श्यामचंद प्रकाश को याद करते हैं कि उन्हें जो भी कुछ पाया है श्यामचंद प्रकाश की बदौलत ही पाया है। श्यामचंद प्रकाश रंजीत मूवी टोन से वाबस्ता थे बम्बई में, और उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रही और कामयाबी हासिल करती रही। 1941 में उन्होंने खुर्शीद से वो मशहूर गाना पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता गवाया था, और खुर्शीद इस गाने की बदौलत शौहरत की बुलंदी पर पहुंच गई थी।

0: देखिए ये 40s की बात है कि जब खेमचंद जी
1: जी
0: कलकत्ता से रंजीत फिल्म कंपनी में आए और पृथ्वीराज जी उनको लेकर आए थे और मैं रंजीत में काम कर रहा था, एक म्यूजिशियन के हैसियत से काम कर रहा था
1: जी।
0: फिर खेमचंद जी को पहली पिक्चर वहाँ दी गई, गाजी सलाउद्दीन उसका नाम था, टाइटल था
1: जी।
0: और एक हाफिज जी के नाम से एक थे न्यू थिएटर्स के एक कलाकार, वो डायरेक्ट कर रहे थे और रतन भाई उनकी वाइफ उसमें हीरोइन थी
1: जी।
0: तो गाजी सलाउद्दीन चूंकि मुस्लिम सब्जेक्ट था तो उन्होंने मुझको अपने साथ खादिमों में लिया, यानी असिस्टेंट की हैसियत से खेमचंद जी ने
1: जी।
0: तो मुझे पहला इन्हें ये मौका मिला कि ऐसे गुनी इंसान और ऐसे गुनी संगीतकार के साथ उनकी खिदमत करने का मौका मिला और मैं वो पहला गाना था उनका अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, ये
1: अच्छा।
0: उसके बोल थे
1: गाजी सलाउद्दीन का
0: जी हाँ
1: अच्छा।
0: तो मुझसे कहने भाई ये इसको कैसे कहना, चूंकि ये अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी ये अरबी लफ्ज है
1: अच्छा।
0: तो बहरहाल हम उनके साथ बैठते थे
1: जी।
0: वो हमको मौका देते थे और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी, बड़ी इनायत थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी खिदमत करने का
1: अच्छा।
2: मेरी मुलाकात जो है
3: जी
2: ये बहुत पुरानी, कलकत्ता में हम हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करते थे, तब वो वहाँ पे किसी कंपनी के लिए शायद स्टेज के होंगे गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए थे और वो गाना सुनते ही मेरे मन में ऐसा बैठ गया और मैं उस वक्त मन में जान लिया था कि ये आदमी एक रोज बहुत अच्छा संगीत रचनाकार बनेगा
3: जी।
2: और वो सिद्ध करके दिखाया है
3: जी।
2: जब वो बॉम्बे में आए और महल पिक्चर में
3: जी
2: आएगा आने वाला जैसा गाने से
3: जी
2: सारे देश को नवाजा, ये तो सबने सुना है
3: जी।
2: मगर एक गाना जो मेरे दिल को बहुत छू जाता है
3: जी
2: वो राजकुमारी का गाना है, घबरा के जो हम सर को टकराए तो अच्छा हो
3: जी।
2: तूने गाना सुना है?
3: जी बिल्कुल सुना है।
2: बहुत खूबसूरत गाना है।

0: तानसेन पिक्चर में साइगल को ध्रुपद अंग सप्त सुरन तीन ग्राम ये ध्रुपद अंग का गाना गवाया। तुम्हें इसके बारे में एक बात हम कहना चाहेंगे, तानसेन के नाम से या तानसेन से और जब भी गाना गवाया गया है ख्याल गवाया गया है
1: जी।
0: मगर बहुत लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि तानसेन के वक्त में ख्याल था ही नहीं
1: जी,
0: ये मानसिंह तुमर के वक्त में से शुरू हुआ ग्वालियर में
1: जी।
0: तो उनके समय में सिर्फ ध्रुपदी था
1: जी।
0: और ये प्रेमचंद जी प्रकाशी है जिन्होंने उनको ध्रुपद से उनका इंट्रोडक्शन करवाया तानसेन को
1: जी।
0: सप्त सुरना तीने ग्राम इस ध्रुपद अंक गीत जो तानसेन में है साइगल के गाए हुए, इसको सुन लो।

मोहब्बत जो में जिनके हाथ जवानी पांव पड़े दिन रात सुने फिर हाय सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।

0: राम राम मंडळी, मी डॉक्टर राजेश नामदेव आहे, म्हणजे तुमचा लाडका बाळू. बाळू ऑन एअर मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आपल्या बरोबर आज परत आहेत स्वातंत्र्य दिन साजरा करायला कर्नल राकेश कुमार सर. जय हिंद.
1: जय हिंद. थैंक यू एक बार फिर से बुलाने के लिए मुझे.
0: अरे वहा, मैं तो चाहूं कि आपके साथ सालों साल बातें करूं. अच्छा, तो 21 साल अपने सर्विस की
1: जी,
0: फील्ड में भी रहे
1: जी,
0: सिविल एरियाज में भी रहे
1: जी,
0: और फिर आपने रिटायरमेंट ले ली
1: जी.
0: उसका कारण?
1: रिटायरमेंट लेने का एक बहुत मेजर कारण जो है वो ये है कि जब आप हर एक इन्फेंट्री ऑफिसर से अगर आप कभी बात करें तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा मोमेंट जो आता है वो, या सपना जो होता है वो है अपनी बटालियन को कमांड करना. तो सन 2014 में मेरा भी ये सपना पूरा हुआ और मैंने अपनी पैरेंट बटालियन तो नहीं कमांड करी, पर मुझे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक बहुत ही फाइन बटालियन 24 ग्रेनेडियर्स को कमांड करने का मौका मिला. एंड जब वो मेरी कमांड खत्म हुई, उसके बाद जब मुझे स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स मिली, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक्टिव फील्ड की ड्यूटी जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं फौज में, वो कम होती जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आपकी बढ़ती जाती है.
0: अच्छा.
1: और मुझे लगता है मुझे हमेशा से ही एक्शन पसंद रहा है, फील्ड पे रहना पसंद रहा है. और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरी पोस्टिंग के दौरान मैं इतनी प्यारी प्यारी जगहों पर रहा हूँ. भारत सरकार ने जो हमको पोस्टिंग्स दी, वो जब हम नेचर के इतने करीब जाते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं. अरुणाचल में, असम में, इवन जम्मू एंड कश्मीर में, वो हम उनको वर्जिन टेरिटरी बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे कोई सिविलियन जनरली पहुँच नहीं पाता, और वो बहुत ही बेहतरीन जगह हैं. तो जब मैं ऐसी जगहों पर आया, मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होती थी जब मैं वापस सिटी की तरफ मिलता था, वापस सिटी की तरफ जब भी मैं आता था, क्योंकि कैंटोनमेंट तो ठीक है, बहुत अच्छे से हर जगह पे कैंटोनमेंट बहुत अच्छे से खूबसूरत तरीके से मेंटेन रहता है, लेकिन जब आप सिटी में बाहर जाते हैं तो आपको जो ट्रैफिक पॉल्यूशन और बिल्डिंग्स और वो जो मिलता है,
0: अलग ही जिंदगी,
1: वो एक अलग जिंदगी है और वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जिंदगी है. और मुझे लगता है कि मैं उससे कभी भी कहीं भी कंफर्टेबल नहीं था. और मेरे को ये लगता था कि आज नहीं तो कल जब भी ये नौकरी खत्म होगी, तो फिर अल्टीमेटली जब मैं बाकी अपने सीनियर्स को देखता था कि वो वापस गुड़गांव में, जयपुर में, या दिल्ली में, या जो भी चंडीगढ़ में, जैसे भी हो, जब वापस लोग सेटल हो रहे हैं तो वो उसी सिविल लाइफ में वापस जा रहे हैं, एक उन्होंने फ्लैट खरीद लिया और फिर उसी सिटी में, मुझे वो कभी जमा नहीं है एक्चुअली. और मुझे हमेशा लगता था कि मुझे जो ये फौज का जो ये लाइफस्टाइल है, खुले जंगलों में, खुले एनवायरनमेंट में घूमना और नेचर के साथ रहना, मुझे हमेशा से पसंद रहा. तो मैंने इस तरीके से प्लान किया कि फौज खत्म होने के बाद, या अगर पॉसिबल हो तो फौज के साथ साथ ही मुझे एक पैरेलल, मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, जिसको, जिससे मैं अपनी लाइफस्टाइल वो नेचुरल लाइफस्टाइल में मेंटेन कर सकूं. मेरा बहुत झुकाव था इसके तरफ, नेचर, सस्टेनेबल फार्मिंग, या इस तरह की जो भी बात है, एनवायरमेंटल कंसर्न जो भी था उस समय, मेरा काफी झुकाव था. और इसके ख्याल से मैंने सोचा कि मैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेता हूं और अपनी एक फार्म लाइफ शुरू करता हूं.
0: नासिक ऑप्ट क्यों किया?
1: नासिक बड़ा नेचुरल चॉइस था. मैं पुणे में, मैंने अपनी फौज के द्वारा ही मिलिट्री, नहीं, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग की, तो मैं पुणे में 3 साल तक पोस्टेड था. तो उस समय मेरा दोस्तों के साथ, एक दो लोगों की, मेरे कोस्टमेट्स वगैरह की और जूनियर्स की यहाँ पे शादी हुई, तो मैं नासिक आया और नासिक मुझे बड़ा पसंद आया. और फिर ये हुआ कि एज लक वुड हैव इट कि मेरी खुद की शादी भी नासिक में ही हुई.
0: हाँ.
1: जी, तो मेरी वाइफ नासिक से हैं, तो ये फिर बड़ा नेचुरल वो बन गया.
0: अच्छा.
1: कि ठीक है, फिर हम अपनी जो भी प्लानिंग करते हैं. इसके पहले मैंने एक बार उत्तराखंड में भी ऐसा सोचा था, पहाड़ मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी हम कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं या कुछ अपनी सेटअप वहाँ बना सकते हैं नेचुरल प्लेस में. लेकिन जब मैं नासिक आया तो मुझे लगा नासिक इज वे वे बेटर, और यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है. उत्तराखंड में एक बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे पोस्टेड था और हादसा हुआ जहाँ पे बादल फटे और बहुत सारा तो भूस्खलन वगैरह और ये सब, तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत सही चॉइस नहीं रहेगी. नासिक उस हिसाब से बहुत स्टेबलाइज्ड है, सेफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आबो हवा बहुत ही बेहतरीन है, और अगर मैं वैसे देखूं तो बहुत बड़े बड़े सिटी के भी बहुत पास है, मुंबई पुणे के भी बहुत पास है, तो यहाँ पे दोनों मिक्स है, आप नेचुरल लाइफ या वो भी रह सकते हैं, और अगर आपको सिटी लाइफ चाहिए, सिटी की फैसिलिटी चाहिए तो वो भी बहुत इजीली अवेलेबल है।
0: तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हो आप?
1: मैं
0: सालों से नासिक में, अभी
1: मैं अभी वैसे तो हम ऑफ एंड ऑन नासिक में ही है, लेकिन अभी मैं रिटायरमेंट के बाद तो पिछले 4.5 साल से नासिक में ही हूँ।
0: क्या कर रहे हो?
1: और अभी मेरा एक वेंचर है जिसको हम फॉग फार्म्स ऑर्गेनिक का हमने नाम दिया है। ये मेरा 6 एकड़ का एक प्लॉट है जिसको मैं एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेस्टिनेशन के रूप में मैं डेवलप कर रहा हूँ, और इसको हमने एग्रो टूरिज्म से भी जोड़ा है। ये हमने एक इस तरह का एक जगह की डेवलपमेंट हमने की है जहाँ पे आप सही में बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से नेचर का मजा ले सकते हैं।
0: कहाँ ये?
1: ये हमारा फार्म जो है वो घोटी सिन्नर हाईवे पे SMBT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उससे तकरीबन 3 किलोमीटर पे है। और जो लोग इसको बॉम्बे की तरफ से सुन रहे हैं तो समृद्धि हाईवे का जो एग्जिट है, नासिक का एग्जिट आप उसको बोलें या घोटी का एग्जिट बोलें, उससे तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत ही ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत इजीली एक्सेसिबल है रोड से भी, और उसके बाद भी जो लेआउट है ग्राउंड का वो इगतपुरी तालुके में आता है, जो ग्राउंड का लेआउट है बहुत ही नेचुरल है। और हमने एग्जैक्टली ये वाटर फ्रंट पे तो नहीं है ये प्रॉपर्टी, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है डैम से, लेकिन हमने अपने खेत के अंदर ही कुछ वाटर बॉडीज का, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज का निर्माण किया है जो कि काफी खूबसूरत है।
0: तो अभी क्या कर रहे हो वहाँ? आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कैसे चल रहा है?
1: जी,
0: जी
1: पहले तो मेरे एक दो और भी वेंचर थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि इस वेंचर में मेरी दिलचस्पी सबसे ज्यादा है, और मुझे ये काम भी पसंद है। मैं हमेशा से दो चीजों के साथ बहुत ही करीबी तौर पे जुड़ा हुआ हूँ, एक तो फील्ड ऑफ एडुकेशन और दूसरा नेचर, और नेचर में भी सस्टेनेबल फार्मिंग या नेचुरल एनवायरमेंट, ये मेरा हमेशा पेट प्रोजेक्ट रहा है। तो मैं अपने फार्म को एक नेचुरल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पे ना आपको सिर्फ इसकी सुविधा हो कि आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर पाएं, आप वहाँ पे आकर के आप चाहे तो गार्डनिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो खेती कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक गार्डन भी है, वेजिटेबल्स गार्डन भी हमने बनाया है, हमारे तकरीबन 20-30 प्रकार के फल के पेड़ हैं वहाँ पे, फूल तो पता नहीं बहुत सारे हैं, और हमारे पास कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग की भी सुविधा है, वहाँ से आप ट्रेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं उस जगह को एक एडुकेशनल हब के तौर पे, जहाँ पे आप बेसिकली नेचर के साथ आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत जोर है, और आउटडोर ट्रेनिंग का बहुत लोग इसकी महत्ता को समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप आउटडोर्स में जाकर के आप किसी भी चीज़ पे या तो आप डिस्कशन लें या आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी क्वालिटीज़ डेवलप हों, या मेरा मानना है कि जो भी जिंदगी जीने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, जिसको हम आमतौर पे सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आउटडोर्स और नेचर के साथ ही डेवलप होती हैं। तो अभी हम अपने फार्म्स पे वैसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप आकर के अपनी नेचुरल एंड सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से जिंदगी को बेहतर बनाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है।
0: क्या बात है। और आपकी ट्रेनिंग उसमें?
1: जी, और मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग को उसमें यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो हमने जिंदगी के पिछले 24 सालों में देखा समझा, और मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का भी जो तकरीबन 4.5 साल है, उसमें भी जो मैंने जितना भी अनुभव हमने लिया है, उन सबको जोड़ करके हम अपना करिकुलम बना रहे हैं, और हमने फार्म पे उस तरह का एनवायरमेंट बनाया है कि आप आकर के, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि आप अपने लाइफ को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं वहाँ पे।
0: लेकिन एक सोल्जर रिटायरमेंट के बाद 20-22 साल सर्विस करने के बाद वापस सिविलियन सोसाइटी से कैसे एडजस्ट करता है? एक कंपाउंड वॉल के बाहर निकलते हो आप डायरेक्टली,
1: जी
0: एकदम अलग अलग जिंदगी।
1: जी जी, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि एज ए सोल्जर एंड स्पेशली एज एन ऑफिसर आप बहुत प्रिविलेज लॉट है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में आपके मेन जो है, आपको अगर मैं बोलूं कि सर आंखों पे बिठा के रखते हैं तो वो गलत नहीं है, और सरकार आपको काफ़ी सारी सुविधाएं भी देती हैं। तो उस परिवेश से निकल करके जब आप एक सिविलियन लाइफ में आते हैं और आप कॉरपोरेट जॉब नहीं कर रहे, आपने अपना कुछ वेंचर खोलने का सपना लिया है या आप उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो ये काफी टफ सिचुएशन है और मुझे लगता है इसमें आपको काफी अनलर्निंग और रीलर्निंग करने की जरूरत पड़ती है।
0: जरूरत ज्यादा है।
1: जी जी पूरी तरह से सहमत हूं मैं, क्योंकि जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो ये बिल्कुल एकदम जैसे अगर हम आज अगर हम हारमोनियम बजाना शुरू करें या हम चाहे जिस भी लेवल पे हो हमको शुरुआत सारेगामा से ही करनी पड़ेगी और वही रियाज वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो शायद आज संगीत को सीखने वाला 6-7 साल का बच्चा भी कर रहा है। आपकी भले ही कोई भी उम्र हो, आपकी भले ही कोई भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन एक नए काम को करने का तरीका जो है वो फिर वो नए सिरे से ही शुरू होता है और उसके लिए आपको बेसिक सीखने की जरूरत है, उसको आपको आपके अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करने की जरूरत है, एक लर्निंग एप्टीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है और जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं जो भी लोग इस वार्तालाप को सुन रहे हैं और इस तरह का कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि आपको मेंटली अपने आप को टोटली रीलाइन करने की जरूरत है।
0: लर्न और अनलर्न, कितना सुंदर शब्द है।
1: जी, अनलर्न एंड रीलर्न, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे लाना पड़ेगा, आपको उसी ह्यूमिलिटी के साथ शुरू करना पड़ेगा जैसे शायद मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग शुरू करी है, जे बिल्कुल नया कैडेट, किसी को कुछ मालूम नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है, जो भी आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसी फेज में जाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी नया वेंचर खोलना है। और बहुत टफ सिचुएशंस आती है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, फिनेंशियली भी टफ आता है, इमोशनली भी टफ आता है, आपका सपोर्ट सिस्टम भी आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ता है, तो ये टफ जर्नी है, चैलेंजिंग है। जी जी, बट एट द सेम टाइम बहुत रिवार्डिंग भी है, बहुत रिवार्डिंग,
0: एक सम्मान मिल जो मिलता
1: जी,
0: है।
1: जी, जी जी
0: अच्छा, जिन बच्चों को सर्विसेज ज्वाइन करनी है
1: जी,
0: उन्हें आप क्या कहोगे और साथ ही उनके पेरेंट्स को क्या कहोगे?
1: ओके, मैं पेरेंट्स को तो सिंपली ये बोलूंगा कि आज के दिन भी इंडियन आर्मी वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर च्वाइसेस है अगर आप अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुआयामी तरीके से, और अगर आपकी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि आप अमेरिका यूरोप जा करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिला सकें, लेकिन आपकी इच्छा है कि उन हमारे बच्चों की लाइफ क्वालिटी उसी तरह की हो, तो मुझे लगता है इंडियन आर्मी एक नेचुरल चॉइस है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या जो फैसिलिटीज आपको इंडियन आर्मी आज आपको देती है वो अभी भी मुझे लगता है कि बाहर में इन सिविलियन लाइफ में 0.001% लोग
0: क्या ही, बात करो,
1: यस, आपको उस तरह की लाइफस्टाइल को जीने के लिए आपको एक नए लड़के को अभी भी करोड़ों में पैकेज लेना पड़ेगा और वो भी शायद अगर वो लेने के बाद शायद ये हो कि उनके पास टाइम ही ना हो उस पैसे को खर्च करने का, ये एक दूसरी दुविधा है। और बहुत सारी चीजें आपको इंडियन आर्मी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देती है और अगर आपकी ऐसी चॉइस है, आप एडवेंचर के शौकीन हैं और मेरे ख्याल से यंग ब्लड्स तो उनको इससे बढ़िया लाइफ तो मुझे लगता नहीं कि उनको मिल सकती है, आप नई नई जगहों को देखने के शौकीन हैं, आप नए नए लोगों को मिलने के शौकीन हैं, आप नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी से बढ़िया कोई जगह नहीं। अगर आप अभी बहुत छोटे हैं, 10th और 12th लेवल पे हैं, तो आप NDA के थ्रू जा सकते हैं और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप इंजीनियरिंग में हैं तो उसमें भी अलग अलग एंट्रीज हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद CDS में भी जा सकते हैं, तो बहुत सारी एंट्रीज हैं डिपेंडिंग ऑन आप किस करियर के किस मोड पे खड़े हैं और आपको किधर जाना है उसके हिसाब से बहुत सारी। एंड इंडियन आर्मी में आज के डेट में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक जिनको हम परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। सो परमानेंट कमीशन मतलब 20 years एंड मोर, आप 32 साल की भी नौकरी कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10+4 की सुविधा होती है, 10 साल की आपको जॉब करनी है एंड उसके बाद आपको 4 साल का और एक्सटेंशन मिल सकता है और फिर 14 साल के बाद आपको निकलना पड़ेगा। तो आज के हिसाब से शॉर्ट

0: आर जाकर के कोई भी काम कर सकते हैं बहुत ही उम्दा तरीके से। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको रीअलाइन करने के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कॉरपोरेट जॉब हो, उसमें आपको रीअलाइन करने के लिए आपको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक्सीलेंट रिजल्ट्स अचीव करने के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं।
1: ओके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
0: जी
1: उसमें क्या चूज करें, कैसा चूज करें?
0: जी,
1: वो अपने हाथ में है या एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद वो डिसाइड होता है?
0: जी अमूनन ऐसा होता है कि आपको तो जनरली अपना रुझान मालूम है, बच्चों को पता होता है कि उनको एयरफोर्स में जाना है या उनको पानी या जहाज में ज्यादा दिलचस्पी है या उनको ग्राउंड एक्शन में ज्यादा दिलचस्पी है, तो आप अपने रुझान के हिसाब से आप अपना करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी डिपेंड करता है आपकी रैंकिंग पे और क्या चॉइस आपने एग्जाम के दौरान आपने उस समय भरा है। तो जनरली ये होती है कि एनडीए वगैरह में तो आप एक नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा जाते हैं
1: और 12th पास करके
0: एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसके बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। एनडीए के 3 सालों में पहला 2 साल तो सबकी कॉमन ट्रेनिंग होती है और हालांकि आपको अलॉटमेंट पता होता है कि आप किस में हैं, इंडियन आर्मी कैडेट हैं, एयरफोर्स कैडेट हैं और नेवल कैडेट हैं, और उसके बाद आपकी फिर अलग अलग ब्रांच में ट्रेनिंग शुरू होती है। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है कि हम कैसे सिलेक्ट करें, तो उसका तो मेरे पास यही जवाब है कि आप अपने इन्वायरमेंट से आपको क्या प्रेरणा मिली है, आपका रुझान किस तरफ है, वो एक मेजर डिसीजन फैक्टर है। और बाकी कभी कभी ये होता है कि जैसे आपका हमेशा से रुझान एयरफोर्स था और आपको फाइटर पायलट बनना है, पर अगर आपकी रैंकिंग नहीं आई उतनी तो हो सकता है आपको ग्राउंड स्टाफ मिले या हो सकता है आपको एयरफोर्स मिले ही ना, क्योंकि अगर एनडीए के टॉप रैंकर्स ने सबने अगर एयरफोर्स ही चुना है तो हो सकता है आपका नंबर वहां पे ना लगे। तो इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है तो उसके लिए आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखें, आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए और बाकी तो जो भगवान देता है वो मेरे ख्याल से वो जो भी देता है वो अच्छा ही देता है, आपको वो मान के चलना चाहिए कि जो भी होता है वो आपके भले के लिए ही होता है।
1: अच्छा, नासिक में आर्टिलरी सेंटर है
0: जी,
1: फिर आर्मी का भी है ना, और एयरफोर्स तो ओजर में है।
0: जी जी, आर्टिलरी इज पार्ट ऑफ आर्मी ओनली। हाँ। जी, तो आप उस तरीके से आर्मी का तो बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है आर्टिलरी सेंटर एंड स्कूल ऑफ आर्टी के फॉर्म में, एंड एयरफोर्स का भी है, ओजर में भी है और देवलाली के पास भी है।
1: देवलाली में एयरफोर्स भी है?
0: जी जी, उनकी एक मेरे ख्याल से उसको मेंटेनेंस ग्रुप बोलते हैं, बट उनका एक यूनिट है देवलाली में भी है।
1: हेलीकॉप्टर का ट्रेनिंग वगैरह होता है ना काफी
0: वो हेलीकॉप्टर? जी जी, वो हेलीकॉप्टर वो एयरफोर्स का पार्ट नहीं है, वो आर्मी एविएशन का पार्ट।
1: अच्छा,
0: है
1: आर्मी का है?
0: जी जी, वो आर्मी एविएशन का पार्ट है, कैट्स के नाम से जाना जाता है वो।
1: अच्छा।
0: और वो तो नासिक रोड पे ही सिचुएटेड है तो आप आते जाते भी वहां से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देख सकते हैं।
1: देखते काफी।
0: जी जी, तो वो आर्मी एविएशन का पार्ट है एयरफोर्स का नहीं।
1: आर्टिलरी सेंटर ऑफ नासिक का जो है
0: जी,
1: तो वो आप लोगों के लिए कितना महत्व का है, वहाँ क्या क्या होता है?
0: वहाँ पे बेसिकली पी स्टेशन में, जैसे मैंने पहले बताया कि पी स्टेशन में जितने भी कैंटोनमेंट हैं तो उनका मेन एम जो है वो ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ आर्टी और आर्टिलरी सेंटर, ये बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है।
1: आर्टिलरी मतलब बड़ी गन्स क्या?
0: जी जी, बड़ी गन्स। तो बिल्कुल, जैसे एक बहुत पॉपुलर नाम जहन में आता है बोफोर्स गन, क्योंकि एक समय था जब बच्चा बच्चा इसके नाम से परिचित था, तो वो एक आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी गन्स का रोल ये होता है कि वो हम इनको बोलते हैं इनडायरेक्ट फायर। इनडायरेक्ट फायर का मतलब है जैसे हमारी इन्फेंट्री की गन्स तो डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल होती हैं, जब आपको दुश्मन सामने दिखता है तभी आप फायर कर सकते हैं। आर्टिलरी गन्स के साथ ये एडवांटेज है कि अगर आपको सामने दुश्मन नहीं भी दिख रहा है आई साइट में तो भी आप फायर कर सकते हैं, हवाई फायर करके, इंगेज करके। उसकी टेक्निक है, आप उसके ऊपर, दुश्मन के ऊपर गोला गिरा सकते हैं और उनकी फायर पावर और जो उनकी विध्वंसक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और आप आजकल तो हमारे पास इस तरह की आर्टी गन्स हैं जो बहुत दूर दूर तक फायर कर सकती हैं। नॉर्मल आर्टिलरी गन्स की जो रेंज है वो 20 से 40 किलोमीटर तक हम बड़े आराम से बहुत इफेक्टिव फायर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे को बेसिकली इन्फेंट्री, अगर मैं इन्फेंट्री सोल्जर बोलूँ तो हमको बहुत नाज है अपने आर्टिलरी पे और

0: हमको बहुत सपोर्ट देती है जब हम रियल असॉल्ट के लिए जाते हैं। हमारी जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है।
1: क्या बात है कर्नल साहब, वापस कहता हूँ और बात करने की इच्छा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ एक नेक्स्ट संडे वापस हम लोग बात करें।
0: जी
1: सब्जेक्ट ये हो
0: जी
1: कि आप लोग इतना अपने जान देने को तैयार हो
0: जी
1: देश के लिए
0: जी,
1: और हम सिविलियंस इधर क्या कर रहे हैं
0: जी,
1: मातृभूमि मातृभूमि करते, उसके लिए हमारी प्रति सिर्फ दो दिन के लिए एक भावना जागृत हो जाती है, उसके बाद वापस खत्म। करप्शन का लेवल क्या, ये क्या, वो क्या, अपने देश का नुकसान करना, ऐसा करना, उसके बारे में बात करेंगे। ये देख के आप लोगों को कैसा लगता है
0: जी,
1: और उसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस करिए
0: जी,
1: ठीक है
0: जी।
1: तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। राम राम मंडली फेड़िया।

0: संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने 1940 से पहले ही फिल्मों में प्रवेश किया। जयपुर में जन्मे पंडित गोवर्धन प्रसाद के बेटे खेमचंद प्रकाश को संगीत विरासत में ही मिला, क्योंकि पिता राज दरबार में गायक थे। संगीत के अलावा नृत्य में भी उनकी रुचि थी, लिहाजा कथक नृत्य की भी शिक्षा ली और केवल 19 वर्ष की छोटी उम्र में बीकानेर के महाराजा के दरबार में गायक की हैसियत से नियुक्त हुए। बाद में नेपाल दरबार में रहे। संगीत उनकी रग रग में बसा था।
1: फिर जाऊं अभी, फिर जाऊं, तुम ठहरो अभी, ले आऊं।

0: बस तोबा बीबी तोबा,
1: पहले भी तो की थी तोबा।
0: अरे बस तोबा बीबी तोबा,
1: पहले भी तो की थी तोबा तोबा।

हरिश्चंद्र प्रकाश राजस्थान से वाबस्ता थे सुजानगढ़ के, और शास्त्रीय संगीत में और लोक संगीत में काफी महारत हासिल की थी उन्होंने, और मशहूर ध्रुपद गायक भी थे और अच्छे, बहुत अच्छे कथक नृत्यकार भी थे। यही वजह से उनके गानों में जो हम ताल की अहमियत खास दिखाई देती है, और कलकत्ते में उन्होंने न्यू थिएटर्स में तिमिर बरन के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम किया। श्यामचंद प्रकाश उन महान संगीतकारों में से थे जिनकी याद वक्त की रवानी में बह गई है। 1939 में बम्बई आए, उनकी पहली फिल्म थी मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन, जिसमें उन्होंने आज के मशहूर संगीतकार नौशाद को अपना असिस्टेंट बनाया था। नौशाद आज भी एहतराम से श्यामचंद प्रकाश को याद करते हैं कि उन्हें जो भी कुछ पाया है श्यामचंद प्रकाश की बदौलत ही पाया है। श्यामचंद प्रकाश रंजीत मूवी टोन से वाबस्ता थे बम्बई में, और उनकी एक के बाद एक फिल्में आती रही और कामयाबी हासिल करती रही। 1941 में उन्होंने खुर्शीद से वो मशहूर गाना पहले जो मोहब्बत से इनकार किया होता गवाया था, और खुर्शीद इस गाने की बदौलत शौहरत की बुलंदी पे पहुंच गई थी।

0: देखिए ये 40s की बात है कि जब खेमचंद
1: जी
0: कलकत्ता से रंजीत फिल्म कंपनी में आए और पृथ्वीराज जी उनको लेकर आए थे और मैं रंजीत में काम कर रहा था, एक म्यूजिशियन के हैसियत से काम कर रहा था
1: जी।
0: फिर खेमचंद जी को पहली पिक्चर वहाँ दी गई, काजी सलाउद्दीन उसका नाम था, टाइटल था
1: जी।
0: और एक हाफिज जी के नाम से एक थे न्यू थिएटर्स के एक कलाकार, वो डायरेक्ट कर रहे थे और रतन भाई उनकी वाइफ उसमें हीरोइन थी
1: जी।
0: तो गाजी सलाउद्दीन चूंकि मुस्लिम सब्जेक्ट था तो उन्होंने मुझको अपने साथ खादिमों में लिया, यानी असिस्टेंट की हैसियत से खेमचंद जी ने
1: जी।
0: तो मुझे पहला इन्हें ये मौका मिला कि ऐसे गुनी इंसान और ऐसे गुनी संगीतकार के साथ उनकी खिदमत करने का मौका मिला और मैं वो पहला गाना था उनका अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी, ये
1: अच्छा।
0: उसके बोल थे
1: गाजी सलाउद्दीन का
0: जी हाँ
1: अच्छा।
0: तो मुझसे कहने भाई ये इसको कैसे कहना, चूंकि ये अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी ये अरबी लफ्ज है
1: अच्छा।
0: तो बहरहाल हम उनके साथ बैठते थे
1: जी।
0: वो हमको मौका देते थे और ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी, बड़ी इनायत थी कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी खिदमत करने का।
1: अच्छा उन
2: मेरी मुलाकात जो है
3: जी
2: ये बहुत पुरानी, कलकत्ता में हम हिंदुस्तान रिकॉर्डिंग कंपनी में काम करते थे, तब वो वहाँ पे किसी कंपनी के लिए शायद स्टेज के होंगे गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए थे और वो गाना सुनते ही मेरे मन में ऐसा बैठ गया और मैं उस वक्त मन में जान लिया था कि ये आदमी एक रोज बहुत अच्छा संगीत रचनाकार बनेगा
3: जी।
2: और वो सिद्ध करके दिखाया है
3: जी।
2: जब वो बॉम्बे में आए और महल पिक्चर में
3: जी
2: आएगा आने वाला जैसा गाने से
3: जी
2: सारे देश को नवाजा, ये तो सबने सुना है
3: जी।
2: मगर एक गाना जो मेरे दिल को बहुत छू जाता है
3: जी
2: वो राजकुमारी का गाना है, घबरा के जो हम सड़कों टकराए तो अच्छा हो
3: जी।
2: तुमने ये गाना सुना है?
3: जी बिल्कुल सुना है।
2: बहुत खूबसूरत गाना है।

0: तानसेन पिक्चर में साइगल को ध्रुपद अंग सप्त सुरन तीन ग्राम ये ध्रुपद अंग का गाना गवाया। तुम्हें इसके बारे में एक बात हम कहना चाहेंगे, तानसेन के नाम से या तानसेन से और जब भी गाना गवाया गया है ख्याल गवाया गया है
1: जी।
0: मगर बहुत लोग ये शायद नहीं जानते होंगे कि तानसेन के वक्त में ख्याल था ही नहीं
1: जी।
0: ये मानसिंह तुमर के वक्त में से शुरू हुआ
1: जी,
0: था ग्वालियर में
1: जी।
0: तो उनके समय में सिर्फ ध्रुपद ही था
1: जी।
0: और ये खेमचंद जी प्रकाशी है जिन्होंने उनको ध्रुपद से उनका इंट्रोडक्शन करवाया है तानसेन को
1: जी।
0: सप्त सुरन तीन ग्राम इस ध्रुपद अंक गीत जो तानसेन में है साइगल के गाए हुए, इसको सुन लो।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।